सिर्फ दिल टूटा है सांस में, धड़कनों में रवानी अभी बाकी है। प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या, जिंदगी की कहानी अभी बाकी है।

0: क्यों किया लक्ष्य? क्यों?
1: मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ I love you.
0: बिल्कुल झूठ.